0: जंगल है, आधी रात है।
1: इतना क्यों याद आ रही हो? What do you expect? ट्रेन से कूद कर लौटा? Hey, not possible. You know what they're saying? Life is like a roller coaster ride. What do you say? But tum to yahan ho hi nahi.

0: Now just imagine, एक लड़की नकचड़ी सी, थोड़ी सी पागल, you know, slightly mad like you.
1: अच्छा?
0: और एक लड़का.
1: और लड़का बड़ा समझदार है ना?
0: नहीं नहीं, लड़का तो उससे भी बड़ा पागल, वरना उससे प्यार कैसे करता. और एक दिन चर्च में

0: See, you're a natural.
1: वो तो मैं हुई. अच्छा बाकी सब रिकॉर्डिंग में संभाल लेंगे. हाँ सौ लिए हैं.

नमस्कार, मैं नाइकवाड़ी नगर तालुका मोहोर जिला सोलापुर से सरपंच शेख बोल रहा हूँ। मैडम, आपने जो बिग स्टार शो किया, जिनके गानों में आनंद, जिनके नाम में आनंद, आनंद ही आनंद, ऐसे आनंद बख्शी साहब पर आपने जो बिग स्टार शो पेश किया, वो हमारे दिल को छू गया। इतना पसंद आया कि मैंने उसको फिर दोबारा रात में भी सुन लिया। बहुत अच्छे सीधे सरल शब्दों में अपनी बात कहने वाले आनंद बख्शी साहब के जो गाने आपने चुने थे, और एक एक लाइनें आप खुद गाकर भी सुना रही थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और एक घंटा कैसे बीत गया ये पता ही नहीं चला। एक बार साजन फिल्म के गानों को सुनकर समीर साहब को खुद आनंद बख्शी साहब ने ये कहा कि बेटा, तुमने क्या गाने लिखे हैं, तबीयत खुश हो गई। ऐसे महान गीतकार की तरफ से ये कॉम्प्लीमेंट मिलना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये लेजेंडरी गीतकार आनंद बख्शी जैसे गीतकार अब फिर दोबारा नहीं होंगे। मैडम, आपने उनकी यादें ताज़ा की, इसलिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया आपने, और उसी तरह से आपने जो अजय देवगन पर जो प्रोग्राम किया बिग स्टार, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो मेरे बहुत फेवरेट हीरो है। इस हीरो पर आपने जो बिग स्टार किया और तमाम फिल्मों के बारे में जानकारियाँ दी, और दिलवाले फिल्म के दो गाने आपने बजाए, मुझे ऐसा लगता है मैडम कि आपने बिग स्टार शो को अजय देवगन का जो किया था, उनमें अगर थोड़े थोड़े किसी और फिल्मों के या दिलवाले फिल्म की थोड़े थोड़े डायलॉग भी अगर आपने सुनवाए होते तो और भी इंटरेस्टिंग बन जाता।

हुए हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं।

तारों में चमक, फूलों में रंगत ना रहेगी, अरे कुछ भी ना रहेगा अगर मोहब्बत ना रहेगी।

कसम तोड़ेंगे इसका गुरूर हम, हमने खाई है कसम तोड़ेंगे इसका गुरूर हम। खंभे जैसी खड़ी है लड़की है या छड़ी है, शोला है फुलझड़ी है पट्टा की लड़ी है, आंखों में गुस्सा।

0: देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो जलने दो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ पाई?
1: हाँ तो हट जाए
0: हो जाए।

0: अच्छा,
1: अरे हाँ वो चोर की शक्ल है गोरी।
0: तो क्या हुआ?
1: हो गया मिलना बहुत जरूरी।
0: चल पगले,
1: फिर सुनो तो आगे हमारी दिल की मजबूरी। तो तो जो मेरे करीब आया,
0: ओहो
1: मेरे तन पे पड़ा जो साया।
0: फिर क्या हुआ?
1: यूँ समझो ना गले लगाया।
0: ची ची ची।

0: आता है पसीना।
1: बाप रे,
0: कल मैंने देखी अजब हसीना। प्यार में उसके धड़के मेरा दिल जलता है सीना धक धक धक। बात वो आई बड़ी अदा से, बोली क्यों हो खफा खफा से।
1: हाय मर जाऊं,
0: हम भी थे एक नजर के प्यासे।
1: क्यों नहीं,
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम।

0: क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं,
1: अरे
0: सुनो तो, मोना सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: पहले जरा आप मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई,
1: पहले जरा आप मुस्कुराई।

0: परसों वाली मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूं। यहां आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

अगर ये दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला ला बस बस बस बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया. म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए. रेडी 1 2 3 4